0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें।

0: सीखा इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें